0: का तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मोक्ष का साधन करते हो, स्वर्ग का साधन करते हो कि ब्रह्मलोक के जाने का साधन करते हो, ये साधन करने आपके ऊपर। आप कहो कि आप धंधा भी करेंगे और वहां व्यापार भी करेंगे और मोक्ष में मिल जाए दोनों, ये कैसे होगा? उसके लिए वैराग्य चाहिए, विवेक, वैराग्य, सरसमति, मुमुक्षता आदि चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप उनको छोड़ करके धंधा करेंगे और 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे और मोक्ष भी मिल जाए? हमारे अंतकरण में भगवान भी बैठे और धंधा भी बैठे, धंधा भी बैठे और भगवान भी बैठे, बैठेगा? दोनों का जगह एक ही शोकेस बनेगा? तो कैसे मिलेगा मोक्ष? जनक राजा बात है कि यह जनक राजा सुखदे जनक राजा, क्या आप जनक राजा के कोटि में पहुंच गए क्या? राजा जनक के कोटि में पहुंचा क्या? हाँ, बोला आना बेकार है, बेकार नहीं, आप सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, ये श्रवणम श्रुतम हरन्ति पापानि, ये श्रवण जो है पाप हरण करते हैं, पाप हरण करते करते करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो आपको पहुंचा देगा। श्रुतम हरन्ति पापानि, वेदांत की एक शक्ति है, अचिंत्य शब्द शक्ति है, याद रखना, शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति होती है, वो शक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो कैसे, जैसे आपकी स्तुति कोई करता है तो आप खुश होते हो कि नहीं करते हो? और यदि गाली देता है तो कैसा होता है चित्त? अरे गाली अपमान लांछना सुनते ही चित्त सिकुड़ जाता है, हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। और जब कहते वाह फलाना इतना अच्छा आदमी है, बड़ा पुण्य आत्मा है, बड़े बोझ है, तो सुनते ही आपका चित्त कैसा हो जाता है? चित्त रूपी कमल खिल जाता है। तो चित्त रूपी कमल जब खिलता है ना, तो मुख कमल भी खिल जाता है, मुंह के हंसी आ जाता है, प्रसन्नता होती है, मुस्कुराहट खुल जाता है, नहीं मालूम पड़ता है? तो चित्त रूपी कमल कब खिलेगा? प्रसन्नता जब प्रशंसा सुनेंगे, है नहीं बात, प्रशंसा सुनते हैं। और चित्त रूपी कमल मुरझाएगा कब? निंदा सुनते हैं। तो जैसे शब्द के अंदर शक्ति है आपके चित्त रूपी कमल को खिलाने में, मुरझाने में, ऐसे आप जो रोज सुनते हैं, आप ब्रह्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, ये सब शब्द आप भीतर जाकर आपका काम नहीं कर रहा है? तो ये शब्द जो है ना वैदिक शब्द है, ये शब्द भी भीतर जाकर के हमारे कान के द्वारा भीतर जाकर के हमारे अंतकरण के अनंत जन्मों का, अभी यहाँ दिए ना, यहाँ अभी बताया कि नहीं, जन्मांतर सहस्रेशु अनेक जन्म संचित की संचित क्या श्लोक है ना, अनेक जन्म संसार चित्त पाप समुच्चय, अनेक जन्मों से जो हमारा चित्त में पाप पुंज संचय हुआ वो धीरे धीरे सुनते सुनते श्रुतम हरन्ति पापानि, सुनते सुनते पाप नाश होता, एक दिन में नाश नहीं होगा, कपड़ा में मैल जम जाता है तो ये एक बार घिसने से एक बार धोने से जाता क्या? तो बार बार करना पड़ता है, फिर ऐसे एक दिन सुनने से हो गया? श्रुतम हरन्ति पापानि, आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य निर्दयाशितव्य क्यों बोला? बार बार श्रवण करो, जब शीतकेतु के जैसे 9 बार उसको उपदेश कर दिया गया, एक बार से नहीं हुआ, 2 बार से नहीं हुआ, इतना दृष्टांत दिया, तो हम एकमात्र एक दिन सुनने से 10 दिन सुनने से हो जाएगा? साधन चतुष्टय पहले सुनो, सुनो, साधन चतुष्टय संपन्न साधन क्या है? विवेक, वैराग्य, सत्संगति, मुमुक्षुता आदि है कि नहीं? तो विवेक कब होता है? जब सत्संग में बैठता था, अभी बिनु सत्संगते विवेक न होय राम कृपा बिनु सुलभ न, आप सुनोगे नहीं तो विवेक होगा कहां से? हम भी सुने हैं आप क्या बोल मंत्रणा कर रहे हैं। देखो अर्जुन ने भी पूछा था इस बात को, अर्जुन ने भी बात को पूछा था, भगवान ने क्या बोला? असंशय महाबाहु, ये संशय तू है और क्या, कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा ना। और तो क्या बोल रहा हूँ, चित्त में जा करके शब्द जो है ना काम करेगा या नहीं बताओ, बस उसमें करने दो। तो आप सुनते जाओ, वो जा करके अब सुनना भी क्या है, उसके साथ बताए ना। देखो आप पैसा कमाते हो, कमाते हो ना, पैसा कमा कमा कमा करके जमा करते हो कि नहीं? हाँ नहीं नहीं सुनो, नहीं सुनो, सुन बात तो सुनो, पैसा कमा कमा के इकट्ठा करते हो कि नहीं? इकट्ठा करते हो और कमाते कमाते इकट्ठा करते हो। अब कमाया हुआ पैसा एक दिन में खर्चा करते हो, क्रम से खर्चा होते, समय आने पर खर्चा करते हो? ऐसे ही श्रवण आदि जो है ना, वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन जो होते हैं ना, बार बार सुनना ही संग्रहित होता है। और किस समय में ये काम में आएगा आप नहीं बता सकते हो, किस समय में आपके ये काम आएगा, एक ही दिन में लात मार के सब छोड़ दोगे उस समय किसी को पता नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? वैराग्य पैदा होते हैं ना, वैराग्य का कोई समय नहीं होता है, वैराग्य का कोई समय नहीं होता। किस समय भरत हरि जी को जैसे वैराग्य हो जाता है, राधा को विक्रमादित्य को वैराग्य हो सकता है? है नहीं बात, नहीं कह सकते। किस समय आप कहोगे चले जाने तो दुनिया मिट्टा झूठा है, चले इतना दिन से आपने देख लिया सुन लिया सब कुछ नहीं है। जब चिंतिया मिशत तो महिषा विरक्त साफ अन्य मिच्छत जन साफ अन्य सकता, जब तब कहोगे, किस समय कहोगे ये पता नहीं चलेगा। हाँ ये बात दूसरी है कि भाई किसी किसी को सुनते सुनते सुनते सुनते ऐसा चमड़ी गाढ़ा हो गया तो उसको वैराग्य क्या करेगा, दुनिया की कितना भी कष्ट आवे कुछ नहीं का। तुलसीदास जी को एक मिनट नहीं लगा वैराग्य होने में, तुलसीदास जी को हाँ, बिल्ला मंगल को वैराग्य होने में क्या दिन लगा? हाँ अरे राजा जो है ना वो क्या है ना, वो गोपीचंद को वैराग्य होने में क्या देर लगेगा? वैराग्य गोपीचंद हो गए ना राजा, जब ऐसे राजा लोग त्याग कर सकता है, राजा लोग को वैराग्य हो सकता है, हमको क्यों नहीं हो रहा है? बोले इसीलिए नहीं हो रहा है, हम तुलसीदास जी नहीं है, हमारा कितना भी बोलता जाए सुनते सुनते सुनते सुनते हमारा चमड़ी इतना गाढ़ा हो गया सुनाई नहीं देता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन जय जय शंकर जय अभयंकर presented by मरगदम मणि। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

नमः ओम मधुरी कोविधिशक्रमुख्य चैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः ओम मधुरसफराक्षी सहचराग नमः ओम मधुमधनद्

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

यो अर्वन्तं जिघाग्ने सति तमभ्यामीति वरुणः परोमर्तः परश्वा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा पां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा।

0: పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం. దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర కా ప్రసంగ చల్ రహా హై. పహలే శ్లోక్ సే యే కహా గయా కి జిత్నే భీ ఇదంతేన ప్రతీయమాన్ విశ్వ ప్రపంచ హై వా परमात्मा के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है. उसके संकल्प से भिन्न इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं है. दूसरे श्लोक से ये कहा गया कि जितने भी ये पदार्थ हैं इनके होने में और इनके प्रकाशित होने में परमात्मा का ही सत्ता और परमात्मा के ही प्रकाश इनमें विद्यमान है. दूसरे श्लोक पर बड़ा विचार चला, बहुत दार्शनिकों ने बहुत विचार किया. पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न उठाया था कि कोई भी कार्य उत्पन्न होने से पहले उसके लिए अपने उपादान कारण की आवश्यकता है और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है. परमात्मा जगत का कारण है ये जो तुम कह रहे हो, निमित्त कारण हो इसमें हमें भी आपत्ति नहीं है, परंतु उपादान कारण है परमात्मा ये बात हमें आपत्ति है, क्योंकि ये बात जचती नहीं है. नियम यह है कि उस कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य में अन्वित होकर प्रतीत होकर रहता हो. कार्य होने से पहले अस्तित्व में रहे, कार्य उत्पन्न हो जाने के बाद उस उत्पन्न हुए हुए कार्य में ही अन्वित होकर रहे और कार्य नष्ट हो जाने के बाद भी वह अस्तित्व में रहे. ये तीन अवस्था उपादान कारण की होनी चाहिए. कार्य से पहले हो, कार्य होने के बाद कार्य में ही रहे और कार्य नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में रहे, उसको उपादान कारण बोलते हैं. ईश्वर को, परमात्मा को उपादान कारण जो मान रहे हो तुम, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है वेदांत सिद्धांत के प्रति, कि वेदांत सिद्धांत ये कहता है कि ये जगत का उपादान कारण भी ईश्वर ही है, यानी परमात्मा ही है. और एक तरफ ये कह रहे हो कि परमात्मा चैतन्य रूप है, साथ ही ये भी कह रहे हो कि परमात्मा जगत का उपादान कारण है. तो उपादान कारण है तो ये कार्य में वो परमात्मा का सर्वत्र अन्वय होना चाहिए और वो कार्य में सर्वत्र उसकी प्रतीति होनी चाहिए. लेकिन जगत में कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी को भी कार्य को देखकर उस कार्य में परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की प्रतीति किसी को भी नहीं हो रहा है. नहीं तो यही होना चाहिए था नियम अनुसार. तो जैसे मिट्टी उपादान कारण से घड़ा बनता है, सुवर्ण उपादान कारण से आभूषण बनते हैं, तब संसार में किसी को भी शंका नहीं होती है कि ये आभूषण में सुवर्ण नहीं है. साधारण व्यक्ति को भी ये शंका नहीं होती है. हर व्यक्ति को यह निश्चय है कि यह आभूषण सुवर्ण का ही है, इस आभूषण में सुवर्ण है. और सुवर्ण है ये मानते हुए आभूषण का ग्रहण करता है. आभूषण खरीदने वाला अंदर से पूरा का पूरा पक्का उसको विश्वास है कि ये आभूषण सुवर्ण ही है, सुवर्ण का है, इसमें सुवर्ण विद्यमान है, शत प्रतिशत सुवर्ण है, मानते हुए निश्चय करते हुए आभूषण का ग्रहण करता है, खरीदता है आभूषण को। इसी तरह जगत के पदार्थों को ग्रहण करने वाला किसी के भी मन में यह नहीं होता है कि मैं परमात्मा को ही ग्रहण कर रहा हूं, होता है। माला खरीद के लाए आप तो माला खरीदने वाले को ये मन में हुआ मैं परमात्मा को ही ग्रहण कर रहा हूं, ये हुआ, होता होगा। आप कैरी खरीद के लाते हो, आजकल कैरी का सीजन है, तो कैरी खरीद के जब लाते हो तो आपको पक्का विश्वास होता है कि यह परमात्मा को ही मैं ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन आप ही जब आभूषण खरीदने जाते हो तो आपको आभूषण खरीदते समय, खरीदने के बाद पक्का विश्वास होता है कि नहीं, मैं सुवर्ण को ही ग्रहण कर रहा हूं और सुवर्ण ही मैं प्राप्त कर रहा हूं, मेरे पास सुवर्ण है, ये पक्का विश्वास रहता है कि नहीं। जब मिट्टी के घड़े को खरीदने जाते हो, बंबई में तो सबके पास फ्रिज है इसीलिए मिट्टी के घड़े का कोई औचित्य नहीं रहा, गांव में भी आजकल फ्रिज पहुंच गया है, लेकिन गांव में पहले तो यही था कि सब मिट्टी का घड़ा रखते थे ठंडा पानी के लिए गर्मियों में। हम भी अपने अभी भी रखा है, देखो अभी भी रखा है उन्होंने, हाँ मिट्टी का ही घड़ा रखा है। हम जब ट्रेन में यात्रा करते थे पहले, हरिद्वार से जब बनारस जाना होता था पढ़ने के लिए, बनारस से जब हरिद्वार आना होता था छुट्टियों में, तब ट्रेन में बैठते थे तो एक मिट्टी का घड़ा खरीद लेते थे, पानी भर के रख लेते थे और बनारस पहुंचते तक उसमें पानी डाल दिया, पानी ठंडा, चाहे जितनी गर्मी हो बाहर पीते समय पानी ठंडा ही मिलता था। तो जब भी आप पानी मिट्टी घड़े को खरीदते हो, ग्रहण करते हो, उस समय आपको पक्का ये विश्वास रहता है कि मैं मिट्टी को ही ग्रहण कर रहा हूं। तो क्या संसार के पदार्थों को ग्रहण करते समय में आपको यह लगता है कि मैं परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं? यदि परमात्मा उपादान कारण होता तो सबको ये लगना चाहिए था। जैसे मिट्टी उपादान कारण होने के कारण घड़े को खरीदते समय में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं मिट्टी को ग्रहण करता हूं, इसी प्रकार के सुवर्ण आभूषण का उपादान कारण होने से सुवर्ण को ग्रहण करने, आभूषण को ग्रहण करने वाले को यह लगता है कि मैं सुवर्ण ग्रहण कर रहा हूं। इसी तरह ये सारे जगत के प्रपंचों के पदार्थों का उपादान कारण यदि परमात्मा होता तो हर व्यक्ति को यही लगता कि हर पदार्थों को ग्रहण करते हुए मैं परमात्मा को ही ग्रहण करता हूं। लेकिन संसार में ऐसा किसी को भी नहीं लगता है, शायद एक दो आदमी को हुआ होगा, ये एक दो को लगा होगा इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, संत तुलसीदास जी को लगा होगा शायद इसीलिए उन्होंने ये कहा है, सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, शायद उनको लगा होगा। तो ये एकाद प्रमाण के अलावा और अन्यत्र सर्वसाधारण में ये प्रचलन में नहीं है, तब ये मानना चाहिए कि परमात्मा निमित्त कारण तो हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता। इस आशय का खंडन करते हुए ये तीसरे नंबर का श्लोक यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भविन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। पहले तो ये समझना चाहिए परमात्मा है कैसा, और कार्य में उस परमात्मा का अनुगमन किस तरह होता है। वास्तव में कार्य को ग्रहण करने वाला परमात्मा को ही ग्रहण करता है, लेकिन उसको वह बुद्धि न होने के कारण उससे ये नहीं लगता है कि कार्य को ग्रहण करने पर मैं कारण परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं, ये उसको ये बुद्धि नहीं होती। उसका हेतु बता दिया। परमात्मा में दो चीज हैं, यूं तो और भी चीज है, जैसे सत यानी सत्ता, परमात्मा का ये सत ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा में यह सत नित्य रूप में रहता है, सत्ता नित्य रूप में रहती है। इसी प्रकार के परमात्मा में प्रकाश चित, चित माने प्रकाश, चित माने चैतन्य, चित माने प्रकाश। ये प्रकाश और चैतन्य ये दोनों पर्यायवाची है। ये दो चीज हर कार्य में अनुस्वीत है, और कार्य ग्रहण करने वाला हर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, भले ही उसको ये बुद्धि न हो कि मैं परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन कार्य का जो उपादान कारण परमात्मा है, परमात्मा में जो दो भाव हैं उसका वो ग्रहण कर ही रहा है। ये हर कार्य में अनुस्वीत है, वह है सत सत्ता और प्रकाश। ये दो चीज हर कार्य में विद्यमान है, इसलिए कार्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति परमात्मा रूपी उपादान कारण को ग्रहण कर ही रहा है, वो पहचान नहीं रहा है, ये उसकी मूर्खता है। ये मान नहीं रहा है, ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसको ये बोध ही नहीं है कि परमात्मा सत यही परमात्मा का स्वरूप है, ये उसको बोध नहीं है। गंधवती ये पृथ्वी का स्वरूप है, जैसे अज्ञानी को बोध नहीं है, जैसे घड़े को ग्रहण करने वाला मिट्टी को ग्रहण कर रहा हूं ये तो मानता है, लेकिन गंध वाले मिट्टी को ग्रहण कर रहा हूं ये किसी को बुद्धि में नहीं आता, आपकी भी नहीं आती होती होगी, क्योंकि गंधा ये पृथ्वी आश्रित है और गंधा ये पृथ्वी का लक्षण है, गंधा ये पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है। यह नहीं है कि कोई आगंतुक लक्षण हो, पृथ्वी में जो गंधता है वो कोई आगंतुक लक्षण नहीं है, गंधता ये पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है। जैसे जल मधुरता जल का अपना स्वरूप लक्षण है, मधुरता ये जल में कोई आगंतुक निमित्त से संयोग से आगंतुक स्वरूप लक्षण नहीं है, वो अपना स्वरूप है। किसी के संयोग से मधुरता जल में आई हो ये बात नहीं है, मधुरता तो उसका स्वरूप है। इसी तरह गंध ये पृथ्वी का स्वरूप है, किसी के संयोग से पृथ्वी में गंध आया है ऐसा नहीं है। जैसे लोहे में गर्मी उष्णता अग्नि के संयोग से आता है, बात समझ रहे हैं? लोहे में बर्तनों में गर्मी गर्मपना ये अग्नि के संयोग से आता है, क्या इसी तरह पृथ्वी में गंध किसी के संयोग से आएगा? जैसे रसगुल्ले में मधुरता चीनी के संबंध से आता है, यदि चीनी के साथ उस रसगुल्ले का संबंध न हो तो उसके स्वरूप में, रसगुल्ले के स्वरूप में मधुरता नहीं है, समझ रहे? स्वरूप में मधुरता होती तो वो जो छेना बनता है दूध फाड़कर उसी में मधुरता होती, स्वरूप में होता तो दूध में मधुरता होती। वो मिठास न दूध में है न छेने में है, और उसी छेने से बनाया हुआ जो गोल आकार वाला रसगुल्ला उसमें भी मधुरता नहीं है। उसमें मधुरता तब संभव है जब शक्कर के साथ चीनी के साथ उस गोलक का संबंध हो जाए, तो संबंध से आया हुआ होता है। जलेबी में जो मधुरता है वो शर्करा संबंध से आया हुआ होता है। क्या इसी प्रकार के जल की जो मधुरता है वह किसी के संयोग से है? वो उसका स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा में जो सत्ता है वह किसी के संयोग से नहीं आया है। परमात्मा में जो होनापना है, सत्तापना है, ये उसका अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा में जो चेतना है वह किसी की संयोग से नहीं है। आज हर अज्ञानी, हर मूर्ख व्यक्ति भी यही कहता है कि जो घूमते फिरते मनुष्य हैं या प्राणी हैं वे सब चैतन्य हैं, यही मानते हैं। आप भी मानते हैं कि मेरा शरीर चैतन्य है, मैं भी मानता हूं कि मेरा शरीर चैतन्य है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी यही मानता है कि मेरा शरीर चैतन्य है, मेरा शरीर जड़ है, वह स्वीकार नहीं करता। आप भी नहीं स्वीकार कर रहे हो। और देखने वाला चींटी से लेकर हाथी, हाथी से लेकर चींटी, यावत प्राणी जीव मात्र को संसारी लोग चैतन्य ही मानते हैं, जड़ नहीं मानते। लेकिन इन शरीरों में जो चेतना विद्यमान है, प्रतीति है चेतनता की, इस शरीर के स्वरूप में नहीं है ये चेतना। जैसे जलेबी में चीनी के रस से, चाशनी से संपर्क होने से पहले मधुरता नहीं है, संपर्क होने के बाद ही मधुरता का संभाव होता है, संचार होता है, इसी तरह ये जो आपका हमारा शरीर है इसके स्वरूप में चेतनता नहीं है। चैतन्य के संपर्क से इसमें चेतनता आई है, चैतन्य के संपर्क से। और जो संयोग से जो भाव आता है वह वियोग से वो भाव हट जाता है, इसलिए मृदा में, मृत शरीर में चेतनता है ये कोई स्वीकार नहीं करता। कोई मूर्ख स्वीकार करता है, एक बार की घटना में सुनाऊं, इसी बात पर थोड़ा पुरानी स्मृति याद आ गई। हम हरिद्वार में थे, लगभग 32-35 साल पहले की बात है ये। और आप लोगों को पता है कि नहीं, हरिद्वार में जो भी साधु संत देह छोड़ते हैं उनके छोड़े हुए देह को नीलधारा में ले जाकर जल समाधि देते हैं, ये सभी को वहीं दिया है। त्यागमूर्ति गणेशानंद जी को भी वही नीलधारा में दिया है, हमारे गुरु महाराज को भी वहीं दिया है, बड़े बड़े संत वहां पहुंचे हैं, है? सभी को नीलधारा में ले जाते हैं और जल में समाधि दे देते हैं, पत्थर पुत्थर रख के वो जल में छोड़ देते हैं, वो नीचे जल में, नीचे जमीन में जाकर बैठ जाता है वो शरीर। इसलिए पत्थर डालना पड़ता है, यदि पत्थर न डालो तो फिर वो पानी में उतर जाता है और बह जाता है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा ना, हाँ, लाश हरदम तैरता रहा पानी में, लाश हरदम पानी में तैरता रहा, मगर उसे डूबने के लिए उसे जिंदगी चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक वो लाश डूबता रहता है, और जब जिंदगी चला गया तो लाश तैरने लगता है। तो इस किसी ने कहा, इसीलिए क्योंकि उसको डुबाने वाला ही जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जब पानी में डूबते हैं, जब तक वह नहीं मरता है तब तक वह डूबा रहता है, पानी के अंदर रहता है। मरते ही जब उसका जीवन निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, पूरी अष्टक चिदाभास के सहित पूरी अष्टक उस स्थूल शरीर में से बाहर निकलता है, तब धनंजय वायु काम करने लगता है, और धनंजय वायु काम करते ही शरीर फूलने लगता है और पानी से ऊपर आता है। ये स्वाभाविक ही है, अंदर वायु फूल गया तो बाहर से वह हल्का हो जाता है तो ऊपर आता है। तो ऊपर ना आवे इसके लिए निर्जीवन प्राणी को शरीर को वहां गाड़ना है, ऊपर ना आवे इसके लिए पत्थर डालकर हम लोग जो है नदी में छोड़ देते हैं, इस आशय से कि उस नदी के मछली है, जलचर जीव है, वो भी भंडारा खा में कभी कभी कभी हाँ, तो हम लोग तो भंडारा खाते ही है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirinyana Sambandha Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge ek diggaj dakshin bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Thirinyana Sambandhar hai. चोल प्रदेश के सीरकाड़ी धाम में शिवपाद हृदय नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ तिरुज्ञान संबंधर का जन्म हुआ। बालक अभी 3 वर्ष का ही था कि मंदिर के सरोवर के पास खड़े इन्हें तीनों लोगों की अधीश्वरी उमा देवी ने स्वर्ण की कटोरी में अपना स्तन्य रूपी ज्ञानामृत पिलाया था। उस समय इनके पिता सरोवर में स्नान कर रहे थे। बालक के मुंह पर दूध के छींटे देखकर पिता ने पूछा, बच तुझे दूध किसने दिया? वेदों के लिए अज्ञात उस परम तत्व की ओर अपनी नन्ही उंगली से संकेत करते हुए बालक संबंधर ने कहा, देखिए उन्होंने दिया। फिर बालक ने काव्यमय तमिल में पद सुनाया, तो रुडई सेवी, कानों में आभूषण धारण करने वाला, वृषभ के वाहन को धारक के रूप में धारण करने वाला, अपने विशाल मस्तक पर द्वितीय के चंद्र को धारण करने वाला, अपने अंगों में श्मशान भूमि की भस्म को लगाने वाला ही मेरा चित्त चोर है। 5 वर्ष की अवस्था में अपने यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर उपदेश देने के लिए आए आचार्यों के वेद वेदांत विशेष संशयों का निवारण करके उन्होंने सबको चकित कर दिया। ऐसे अद्भुत बालक को पिता अपने कंधे पर लेकर प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए जाते थे, जहां संबंधर भगवान की स्तुति में सुंदर पदों का गायन करते थे। संबंधर इतने छोटे थे कि पैदल चलना संभव न था। देवी उमा ने उन्हें बाल्यावस्था में दूध पिलाया था, इसलिए भगवान शिव ने इन्हें अपना पुत्र मानकर सवारी के लिए मोतियों की पालकी, पहनने के लिए मोतियों का हार और विश्राम के लिए मुक्ता मंडप आदि प्रदान किया। एक बार की बात है, तिरुनीलकंठ याल पानर नामक शैव संत इन्हें मिलने आए। वे अपेक्षाकृत निम्न जाति के थे। संबंधर उनके याल मतलब वीणा जैसा वाद्य यंत्र वादन से इतने प्रभावित हुए कि याल पानर को अपने पास बिठा लिया और पद गाते समय याल बजाने का अधिकार दे दिया। यह दिखाता है कि तिरुज्ञान संबंधर ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। तिरुमरुगल नामक गांव में कोई युवती अपनी पति के साथ प्रवास कर रही थी। रात के समय सर्पदंश से पति की मृत्यु हो गई। उसके शोक में व्याकुल युवती ने हृदय पूर्वक रोने लगी। उनके रोदन का स्वर सुनकर संबंधर ने तिरुमरुगल के अधीश शिव की स्तुति की और पद गाने लगे। प्रभु कृपा थे मृतक युवक जीवित हो उठा। इस भांति संबंधर ने उस युवती का सुहाग उसे पुनः प्राप्त करवा दिया। भक्तिगान करते हुए संबंधर और याल पानर तिरुवेरुकत्तम पुलियूर पहुंचे। संयोगवश यही याल पानर का गांव था। यहाँ के एक मंदिर में जब संबंधर पद गा रहे थे तो गीत के बल कठिन होने के कारण याल पानर उन्हें अपने संगीत में बांध नहीं पाए। वे बड़े दुखित हुए और अपनी याल को नष्ट करने लगे। संबंधर ने उन्हें सांत्वना दी और ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद याल पानर भगवान के अनुग्रह से इतने अच्छे से याल बजाते थे कि लोगों को लगता था कि ये तो भगवान के ही कोई भक्त होंगे या उनके गण होंगे जो ये याल पान इतने अच्छे से बजाते हैं। सीरकाड़ी में रहते समय संबंधर की भेंट तिरुनामकरसर संत से हुई। वे आयु में उनसे काफी बड़े थे। दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि उसने दोनों उसके बाद दोनों साथ साथ ही यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और विभिन्न मंत्रों में पदों का गायन भी साथ साथ करने लगे। अनेक मंदिरों में घूमते हुए संबंदर और तिरुनावकरसर वेदारण्यम पहुंचे। तिरुज्ञान संबंदर ने तिरुनावकरसर को अपर का पदवी दिया, अपर यानी कि पिता। वहां मंदिर वेदारण्यम पहुंच के वहां मंदिर का मुख्य द्वार बंद था। तिरुनावकरसर ने अपने भक्तिपूर्ण पदों के प्रभाव से बड़े बड़े कपाटों को स्वतः ही खोल दिया। जब दोनों संत वेदारण्यम में प्रवास कर रहे थे तो जैन धर्म से प्रभावित पांडिदेश के दूत वहां पहुंचे। उन्होंने संबंदर से प्रार्थना की कि वे शैव धर्म को पुनः स्थापना के लिए पांडिदेश वापस चलें। तिरुज्ञान संबंदर यह नहीं चाहते थे कि ऐसे कलहपूर्ण वातावरण में संबंदर पांडी क्षेत्र में जाएं, परंतु संबंदर ने यह कहकर संतुष्ट किया कि भगवान के भक्तों को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वे पांडी राजधानी मदुरई पहुंचे। अन्य धर्म में विश्वास रखने वाला राजा भयंकर जलन के रोग से पीड़ित था। उस धर्म के धुरंधर वैद्य राजा के रोग शमन का प्रयास करके हार चुके थे। उन्होंने अपनी असमर्थता बता दी। इसी ऐसी स्थिति में शिरकाली के बालक शिव भक्त संबंदर ने शिवजी की स्तुति में भक्तिपूर्ण पद गाए और राजा को विभूत दिया। मंत्रयुक्त भस्म का लेपन करते ही राजा का कष्ट कम हो गया। शीघ्र ही वे रोगमुक्त हो गए। इसके बाद संबंदर ने वाद विवाद में शैव इतर मतवादियों को पराजित किया। मैलापुर जाकर कपालेश्वर मंदिर में पूपावई नामक युवती को, जिसका पहले देहांत हो चुका था, जीवित कर दिया। यह मंदिर समुद्र तट के निकट है। उचित समय में युवा संबंदर का विवाह निश्चित किया गया। भगवान और भक्तों के लिए प्रिय संबंदर के विवाह के अवसर पर दूर और निकट से शिव भक्त एकत्र हो गए। तिरुनल्लूर, जो आजकल अचलापुरम कहलाता है, में विवाह संपन्न होना था। जब अपनी पत्नी के साथ संबंदर अग्नि की परिक्रमा के लिए उद्युत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। सर्वत्र परम ज्योति का प्रकाश हुआ। वह एक अद्वितीय ज्योति थी, जिसमें विवाह के लिए समागत भक्तों और नववधु सहित संबंदर लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि शिव की अद्भुत ज्योति में संबंदर, नववधु और सारे भक्तगण एकत्र हो गए और शिव के समीप पहुंचकर उनके शिवगण बन गए। वे आज भी कैलाश में हैं, ऐसा माना जाता है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: तो अपने जो धनुष बाण है यहां ढुड्डी में रखकर सो गए थे. आप लोग कभी निद्रा लगती है तो कुर्सी में ढुड्डी रखकर सोते हो कि नहीं है? ऐसे ही करके तो धनुष बाण को यहां रखा, अड़ा दिया, फिर वो सो गए. अब जगे तब तो सब देवताओं ने कहा जाकर, उदय होता है ना, दीमक, संस्कृत में दीमक कहते हैं उसको, उसको कहा, अरे तुम लोग सब जाओ और उस धनुष बाण की जो डोरी है उसको चाट डालो, तो उससे क्या होगा, तो उनकी निद्रा खुल जाएगी. वो डोरी कट चूटते हैं, डोरी जब टूट जाएंगे तो चौड़ा हो जाएगा, तो उनका निद्रा खुल जाएगी. दीमक ने कहा कि नहीं नहीं, सोते हुए को नहीं उठानी चाहिए, पाप लगता है. एक साधारण जीव भी सोता हुआ हो तो उसको नहीं उठानी चाहिए, वो तो साक्षात भगवान सो रहे, उनको क्या उठाना. बोले नहीं नहीं, ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा भाई. मुझे क्या दोगे बोलो? ये कमीशन घुस खाने का काम तो पहले से हुआ है. मैं मान लो कि वो धनुष बाण के डोरी को मैं तोड़ूंगा चाट कर, हमको मिलेगा क्या? तो सब देवताओं ने कहा कि यज्ञ में हमारे लिए जो आहुति डालते हैं, आहुति डालते समय यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो चरु गिर जाता है वो सब तुमको खाने को दे देंगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. सच? बोले हां. तब जाते सभी गए, दीमक सब गए और डोरी चाटना शुरू कर दिया. चाटते चाटते जब डोरी टूट गई तो एकदम धनुष का वो खुल गया, उछल गया. उछलते ही विष्णु का तो गर्दन ही कट गया, दो टुकड़े और कट गया. इतना ही नहीं, कट के वहीं टुकड़ा रहता तो वो उसके झटके से वो समुद्र में जाकर गिर गया. अब ये प्रसंग आत्मानंद ने गप कर दिया, कहोगे तो देवी भागवत देख लो भाई, देवी भागवत में लिखा है. अब क्या करे? हाय राम, ये तो हमने जगाने के लिए किया था, वो तो गर्दन ही कट गया. तो अश्विनी कुमार थे देवताओं के वैद्य, चिंता न करो, हम भी शिव के चेले हैं, हमने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, हम भी सर्जन हैं, है? जाओ, जो सिर मिलता है वो लेके आओ. फटाफट देवता लोग दौड़े तो घोड़ा वही पड़ा हुआ था एक, तो उसी का सिर काटा और ला के दिया. ये मिल गया तो जोड़ा तो उल्टा जुड़ गया, सिर उल्टा जुड़ गया. समझे कि नहीं? क्योंकि भगवान विष्णु जब उनका सिर कट गया तो पेट के बल पर गिरे थे, और सिर न होने से किधर पेट है किधर पीठ है पहचान नहीं पाए देवता लोग. उल्ट ला के पीछे से इधर मुख करके गाड़ दिया, तो जब खड़े हुए विष्णु मुख तो पीछे ले जा, जो हो सो होगा. बोले ये सब क्या हुआ महाराज, तुम लोगों ने मुझे क्यों निकाला? बोले महाराज, वो हयग्रीव राक्षस बड़ा उत्पात कर रहा था और आप तो आराम से सो गए थे, या हम लोगों को तो जीना दुभर हो गया था, और इसलिए आपको उठाने जगाने के लिए किया था. अब क्या पता कि आपका गर्दन ही कटेगा, अब कट गया, अब तो करे क्या, अब ला के जोड़ दिया तो ये भी उल्टा जुट गया। हाय राम, जो होता है अच्छा ही होता है। जब विचार किया तो उसने वरदान क्या मांगी थी, बोले मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, तो हयग्रीवा की मृत्यु हयग्रीवा से ही हो, तो विष्णु को हयग्रीव बनना पड़ा और इतना खटपट करना पड़ा। देखो, समझे कि नहीं? इसी तरह भगवान शिव को, गणेश को ये सारी खटपट करना पड़ा। तो पार्वती को समझाया आखिर शिव जी ने, विष्णु के सिर जोड़ने के समय में हाथी का सिर नहीं मिला, क्योंकि हाथी का सिर मिलता और हाथी का सिर जोड़ देते तो हयग्रीव न मरता, तो घोड़ा ही मिला। और गणेश के सिर जोड़ते समय में हाथी न मलकर घोड़ा मिलता, घोड़े का सिर मिलता तो गणेश गजानन न होकर अश्वानन होते, और जो अश्वानन है वो गणाधिप नहीं हो सकता है, गणाध्यक्ष नहीं हो सकता है, गणपति नहीं हो सकता है। वेद ने सीधे लिखा है जो गणपति होगा वो गजानन होगा। ये देखो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चिंता न करो। जब ये प्रमाण मिल गया तो पार्वती खुश हो गई। इस बात को लेकर मेरा बेटा भले ही हाथी का सिर से जिंदा हो गया, लेकिन मेरा बेटा सारे गणों का अध्यक्ष हो गया, अग्र पूजक का अधिकार हो मिल गया उसको, प्रथम पूजा अग्र पूजक हो गया। लेव जी, बाप से बेटा अग्र पूजक हो गया, शिव कृपा से ही न हुआ। अब ये मुसल का प्रहार गणेश न करते तो गणेश अग्र पूज्य होते, गणाध्यक्ष होते। शिव की कृपा नहीं है तो और क्या है, बोलो। शंकराचार्य जी उस प्रसंग के प्रति इशारा करते हुए कहते हैं, अर्जुन ने धनुष बाण मारा तो आप खुश हो गए, गणेश ने मुसल मारा तो आप खुश हो गए, अब क्या मैं भी मुसल उठाऊं? नहीं तो क्यों नहीं खुश होते हो? नति भी नुति भी बहुविध पूजा, अनेक प्रकार की पूजा भी कर ली है। नति वीर नुति भी स्तमी सब पूजा, विधि वीर ध्यान समाधि वीर न तुष्ट। तो क्या धनुषा मुसले न च अस्मभीर? अब पत्थरों से आप खुश होंगे क्या? बदल आप ही बताओ, जिससे हम खुश हो गए मैं उसी का प्रयोग करूंगा। ते प्रीति कर्म तथा करो। अब पत्थरों से खुश हुए हैं भगवान शिव, ये प्रमाण बहुत मिलता है, समझे कि नहीं? दक्षिण भारत में पेरियार पुराणम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। अब लोग इधर पुराण पुराण बोलते हो ना, शिव पुराण विष्णु पुराण आदि पुराण पुराण है, वैसे तमिल भाषा का ग्रंथ है पेरियार पुराणम। है पेरियार पता नहीं, लेकिन पुराण है, ग्रंथ है। उसमें भगवान शिव के 54 परम भक्तों के चरित्र का वर्णन है, एक से एक, जैसे प्रहलाद का चरित्र है ऐसे ऐसे। तो तमिल में, तमिलनाडु में, साउथ में, दक्षिण में जो बड़े बड़े भगवान शिव के भक्त हुए हैं उन लोगों के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन है पेरियार पुराण में। और शंकराचार्य जी उस बात को जानते थे क्योंकि दक्षिण के ही थे, उन्होंने पेरियार पुराण तो पढ़ा ही था। वहां एक भक्त हुए हैं उस भक्त का नाम था शाक्य नायर, शाक्य नायर। उसके शिव पूजा की बड़े विचित्र ढंग था भाई। मां बाप थे नहीं, मर गए थे बचपन में। उसकी एक बहन थी शाक्य नायर की, उसका नाम अक्का रखा था। उधर के नाम ऐसे होते ना, अक्का नाम था उसका। अक्का भगवान शिव की परम भक्त थी और उसने अपने भाई को भी शिव दीक्षा दी थी और शिव पूजा का नियम बताया था और दोनों भाई बहन परम शिव के भक्त थे। लेकिन शिव भक्ति मात्र से तो काम चलेगा नहीं, योगक्षेम के लिए तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने काम खोजना शुरू किया, कहीं काम मिले तो काम करें। तो शाक्य नायर काम खोजते हुए गए थे तो किसी ने उस समय का जो वहां का राजा था वहां कुछ काम मिल गया उनको। तो काम करते थे, योगक्षेम चलता था। लेकिन वो राजा फिर परम नास्तिक था, परम नास्तिक, मूर्ति पूजा नहीं मानता था, धर्म कर्म नहीं मानता था और कोई इस तरह नियमित पूजा करते हुए उसको दिखाई पड़ा तो उसको दंडित करता था। विशेष करके उसके मातहत के कर्मचारी लोग को भगवान की भक्ति करते हुए पता चला तो उसको नौकरी से हटा देंगे, मार ही डाले। तो बड़ी समस्या हुई। शाक्य नायर ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया हूं, क्या करूं? नौकरी छोड़ता हूं तो योगक्षेम की समस्या है, नौकरी करता हूं तो शिव पूजन की समस्या है। राजा नास्तिक है, उसने सूचना प्रवाह कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी भक्त भगवान की पूजा न करे, सेवा न करे, भक्ति न करे, और इस अवस्था में मैं भगवान की पूजा करूं, एक दिन एक दिन उसको पता तो चलेगा, मुझे निकाल देगा। खाली निकाल दे तो गनीमत, मुझे दंडित करेगा, मार भी सकता है वो, क्या करूं? बोले ऐसी समस्या है? बोले हां बहन। तो बहन अक्का ने कहा, बेटा भैया मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? रोज नियमित एक पत्थर मारा करो। शिव मंदिर में अंदर शिवलिंग होता है, हाँ, सबके देखते देखते उठाओ पत्थर और जोर से निशाना साधकर ठीक शिवलिंग में लगे ऐसा पत्थर मारा करो। तो देखने वालों को लगेगा कि परम नास्तिक है, तो तुम्हें तो और पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इतनी समझना कि पत्थर मारने से पहले दिल पत्थर का नहीं बनाना, दिल पूरी तरह भगवत भक्ति से मानना और कर्ण कहना, महाराज मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता और राजा का अनुशासन खतरनाक है, उसके अनुशासन से आपकी पूजा कर नहीं सकता और मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता। कि मैं लोगों के दृष्टि में भले ही पत्थर हो महाराज, तुम पुष्प समझकर ही ग्रहण करना महाराज, फूल ही समझकर ग्रहण करना। इस भावना से वह पत्थर मारा करता था बहन की आज्ञा से। तो राजा के साथ कई सवारी जाती थी, राजा की वो भी जाता था और राजा को कहता था, महाराज एक मिनट, अब क्या हो गया, मंदिर के आगे? बोले ये हिंदू लोग बिना मतलब का ये पूजा पूजा भगवान भगवान करते हैं, सारा समाज को बिगाड़ रखा है इन लोगों ने। पूजा क्या, इनको तो पत्थर मारना चाहिए। राजा के सामने पत्थर उठाया, निशाना साधा और मन ही मन भावना की, शिवजी ये मेरे तरफ से पुष्प है। मारा राजा के सामने पत्थर, मारा ठीक शिवलिंग में लगा। राजा ने देखा, वास शाबाश है, क्या बढ़िया मेरा भक्त मिला है, मेरा कर्मचारी है। एक दिन की बात है, और ये नियमित पत्थर मारते थे सत्यनारायण, रोज आना और पत्थर उठाना मारना। एक समय नदी में बहुत बाढ़ आ गया और नदी में पुल तो था नहीं, जा नहीं सके, पत्थर मारने पार जा नहीं सके। परिणाम हुआ पानी में भीज गए, उनको बुखार हुआ भयंकर, तो सो गए, कमरे में आकर सो गए। तो राजा ने देखा कि आज सत्यनारायण आया नहीं, किसी ने कहा कि वो तो बहुत बीमार हो गया, चलो जाके देखता हूं। तो राजा सत्यनारायण कहां आया, भगवान शिव वहां प्रतीक्षा करते थे कि आज सत्यनारायण पूजा करने क्यों नहीं आ रहा है। तो बड़ा विचित्र है वो, हमने एक दिन कहा था ना, कहते हैं ना ये दुखा है, क्या है, क्या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। अब ये मोहनिस दिन दिन आकर रोज कहता है, महाराज मालिश करूं, मालिश करूं, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, हैरान करता है। अब एक दिन मालिश करने नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, क्यों नहीं आया, कहना पड़ेगा कि नहीं। और सत्यनारायण एक दिन फूल चढ़ाने नहीं गए, पत्थर मारने नहीं गए, भगवान शिव ने विचार किया क्यों नहीं आया, पता लगा तो बेचारा बिरा में बीमार हुआ है, बहुत भारी बुखार हुआ है। तो भगवान शिव स्वयं सत्यनारायण को झोपड़ी में पहुंच गए और खुद शिव सत्यनारायण के बुखार में सिर में जल की पट्टी कर रहे हैं, ठंडे जल के पट्टी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। राजा जब वहां पहुंचा, देखता है सत्यनारायण की सेवा करने लगे, कौन देखता है तो अरे सिर में त्रिशूल मुकुट है, चंद्रमा है, गले में सर्प है, ये तो शिवा है। और ये शिवा सत्यनारायण की पूजा सेवा कर रहा है, स्वयं जल की पट्टी कर रहा है, ठंडे जल की पानी पट्टी, क्या अद्भुत। ये तो रोज शिवजी को पत्थर मारता था और आज शिवजी। सत्यनारायण ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है, मैं तो रोज आपको पत्थर मारता था। बेटा तो पत्थर नहीं फूले ही देता था। नीलकंठ दीक्षित ने एक कविता लिखी है, अर्चामीति धिया यदेव कुसुमम शिप्वा जनो मुच्यते, मैं परमात्मा की पूजा करता हूं इस भावना से भक्त लोग शिवजी को फूल चढ़ाते हैं और उस फूल चढ़ाकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और वही फूल कामदेव ने शिवजी के ऊपर फेंका था, लेकिन कामदेव भस्मीभूत होकर खराक होकर खत्म हो गया। वस्तु तो एक ही है ना, भक्त भी फूल चढ़ाता है, कामदेव ने भी फूल ही मारा था। पुष्पायुध बोलते हैं ना कामदेव को, उसके धनुष हथियार ही फूल है, पांच हथियार है, वही मारा था, लेकिन वो भस्मीभूत हो गया। नीलकंठ दीक्षित कहते हैं, विद्या मीति धिया तदेव विकिरण भस्मीकृतो मन्मथ इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको। भगवान शिव कैसे हैं, आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक, वो वस्तु पर विचार नहीं करते हैं, वस्तु कैसी है इस पर विचार नहीं करते शिव, उसकी भावना कैसी है। आभ्यंतर वृत्ति रसिक हैं, कामदेव ने फूल मारा लेकिन इनको जीतूंगा करके फूल मारा था, शिवजी को मैं जीतूंगा, सबको जीता है इनको भी जीतूंगा करके फूल मारा था, भस्मीभूत हो गया। भक्त वही फूल चढ़ाता है परमात्मा को प्रसन्न करूंगा करके, वो मुक्त हो जाता है। इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको बाह्यान अपेक्षाश्चय, परमात्मा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं करते हैं, भावना की अपेक्षा करते हैं। स स्वामी मम दैवतम तदितरो नामना पिनामना यते, वही मेरे परम स्वामी हैं, उस शिवजी के अलावा अन्य वो तो नाम मात्र के स्वामी हैं, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे असली स्वामी तो शिव ही है जो आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक है। हाँ, सत्यनारायण ने पत्थर मारा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और शंकराचार्य जी तीन दृष्टांत दे रहे हैं शिव जी के सामने। अर्जुन ने बाण से मारा तब आप खुश हुए, गणेश ने मुसल से मारा तब आप खुश हुए, सत्यनारायण ने पत्थर से मारा तब आप खुश हो गए, अब मैं भी अब इन्हीं में से कोई एक उठाना पड़ेगा आपको खुश करने के लिए, नहीं तो पूजा करता हूं खुश नहीं हो रहे हो, नमस्कार करता हूं आज तक प्रसन्न नहीं हो रहे हो, है वाह क्या कहना। बचसा चरितम बदामि शंभो अहम उद्योग विदा सुते अप्रशक्त हो मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवम नमामि। भगवान की सेवा करने की तीन मुख्य विधा है और इन्हीं तीन साधनों

अहम उद्योग विदासुते अप्रसक्त। अन्य पूजा या अन्य आपको प्रसन्न करने की जो उद्योग हैं, उपक्रम हैं, विधि हैं, उसके लिए मैं असक्त हूं, अप्रसक्त, मैं सामर्थ्यशाली नहीं हूं। मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए बढ़िया मंदिर बनाऊं और वहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा करूं और नित्य निरंतर रुद्राभिषेक के द्वारा, नमक अध्याय द्वारा आपकी अर्चना करूं, ये मेरी बस की बात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अहम उद्योग विदासु ते अप्रसक्त, आपकी पूजा करने में मैं असक्त हूं, असामर्थ्यशाली हूं। हां, यह है कि आपकी कृपा से मुझे जो वाणी मिली है, उस वाणी से आपके नित्य निरंतर गुणानुवाद गा सकता हूं। वचसा चरितम वदामि, और दूसरी बात, मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे, बैठकर मैं आंख बंद करके मन से आपके दिव्य चरित्र विद्या स्वरूपों का मैं ध्यान कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता। विष्णु ने तो सहस्र अर्चना की आपकी, और एक फूल कम होने से आपने आंखें ही चढ़ा दी। रावण ने तो अपनी बहुत अर्चना की और अपने एक एक करके दस दस मस्तक आपके चरण में अर्पण कर दिया। बाणासुर ने तो और भी ज्यादा, आपकी कृपा से ही प्राप्त 1000 हाथ से 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रोज आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 1604 पूजा विधि से पूजा करता था और नर्मदा में विसर्जन करता था। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दैनंदिनी। मुझमें यह सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए इतना है कि मैं बैठकर आसन लगाकर मनसा आकृतिम ईश्वरस्य सेवे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिम् अमरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। मैं इस स्वरूप का तो ध्यान कर सकता हूं मनसा, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। शिरसा चैव सदा शिवम नमामि, और तीसरा विकल्प है, मैं जो कर सकता हूं वो आपके श्री विग्रह जहां भी होंगे मैं सिर से उसको श्रद्धा से प्रणाम कर सकता हूं। बस वचसा चरितम वदामि, मनसा आकृतिम सेवे, और शिरसा चैव सदाशिवम नमामि, और मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। करना भी यही चाहिए शिव भक्तों को, इसके अलावा, इन तीन कर्मों के अलावा अन्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आगे के श्लोकों की व्याख्या अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमः ओम मधुरी कोविधि चक्र मुख्य चैलेरपि निगमार्चित पाद पद्मकाग नमः ओम मधुर सफराक्षी सहचराग नमः ओम मधुमधन दक

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

देवी पूर्वजाहूति सुखे सुखे पयसेन्द्रमवत्सताम् इषमोज्जामन्या रक्षत्सद्भिः।

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। पहले श्लोक से ये कहा गया कि जितने भी इदंतेन प्रतीयमान विश्व प्रपंच है वह परमात्मा के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है, उसके संकल्प से भिन्न इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। दूसरे श्लोक से ये कहा

पूर्व पक्ष ने ये प्रश्न उठाया था कि कोई भी कार्य उत्पन्न होने से पहले उसके लिए अपने उपादान कारण की आवश्यकता है और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। परमात्मा जगत का कारण है, ये जो तुम कह रहे हो, निमित्त कारण हो इसमें हमें भी आपत्ति नहीं है, परंतु उपादान कारण है परमात्मा, ये बात हमें आपत्ति है, क्योंकि ये बात जचती नहीं है। नियम यह है कि उस कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य में अन्वित होकर प्रतीत होकर रहता हो, कार्य होने से पहले अस्तित्व में रहे, कार्य उत्पन्न हो जाने के बाद उस उत्पन्न हुए हुए कार्य में ही अन्वित होकर रहे और कार्य नष्ट हो जाने के बाद भी वह अस्तित्व में रहे। ये तीन अवस्था उपादान कारण की होनी चाहिए, कार्य से पहले हो, कार्य होने के बाद कार्य में ही रहे और कार्य नष्ट होने के बाद भी अस्तित्व में रहे, उसको उपादान कारण बोलते हैं। ईश्वर को, परमात्मा को उपादान कारण जो मान रहे हो तुम, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है वेदांत सिद्धांत के प्रति, कि वेदांत सिद्धांत ये कहता है कि ये जगत का उपादान कारण भी ईश्वर ही है, यानी परमात्मा ही है, और एक तरफ ये कह रहे हो कि परमात्मा चैतन्य रूप है, साथ ही ये भी कह रहे हो कि परमात्मा जगत का उपादान कारण है। तो उपादान कारण है तो ये कार्य में वो परमात्मा का सर्वत्र अन्वय होना चाहिए और वो कार्य में सर्वत्र उसकी प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन जगत में कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी को भी कार्य को देखकर उस कार्य में परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की प्रतीति किसी को भी नहीं हो रहा है। नहीं तो यही होना चाहिए था नियमानुसार। तो जैसे मिट्टी उपादान कारण से घड़ा बनता है, सुवर्ण उपादान कारण से आभूषण बनते हैं, तब संसार में किसी को भी शंका नहीं होती है कि ये आभूषण में सुवर्ण नहीं है, साधारण व्यक्ति को भी ये शंका नहीं होती है, हर व्यक्ति को यह निश्चय है कि यह आभूषण सुवर्ण का ही है, इस आभूषण में सुवर्ण है, और सुवर्ण है ये मानते हुए आभूषण का ग्रहण करता है। आभूषण खरीदने वाला अंदर से पूरा का पूरा पक्का उसको विश्वास है कि ये आभूषण सुवर्ण ही है, सुवर्ण का है, इसमें सुवर्ण विद्यमान है, शत प्रतिशत सुवर्ण है, मानते हुए निश्चय करते हुए आभूषण का ग्रहण करता है, खरीदता है आभूषण को। इसी तरह जगत के पदार्थों को ग्रहण करने वाला किसी के भी मन में यह नहीं होता है कि मैं परमात्मा को ही ग्रहण कर रहा हूं, होता है। माला खरीद के लाए आप तो माला खरीदने वाले को ये मन में हुआ मैं परमात्मा को ही ग्रहण कर रहा हूं, ये हुआ, होता होगा। आप कैरी खरीद के लाते हो, आजकल कैरी का सीजन है, तो कैरी खरीद के जब लाते हो तो आपको पक्का विश्वास होता है कि यह परमात्मा को ही मैं ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन आप ही जब आभूषण खरीदने जाते हो तो आपको आभूषण खरीदते समय, खरीदने के बाद पक्का विश्वास होता है कि नहीं मैं सुवर्ण को ही ग्रहण कर रहा हूं और सुवर्ण ही मैं प्राप्त कर रहा हूं, मेरे पास सुवर्ण है, ये पक्का विश्वास रहता है कि नहीं। जब मिट्टी के घड़े को खरीदने जाते हो, बंबई में तो सबके पास

0: बीज है, इसलिए मिट्टी के घड़े का कोई औचित्य नहीं रहा। गांव में भी आजकल फ्रिज पहुंच गया है, लेकिन गांव में पहले तो यही था कि सब मिट्टी का घड़ा रखते थे ठंडा पानी के लिए गर्मियों में। हम भी अपने अभी भी रखा है, देखो अभी भी रखा है उन्होंने, हाँ मिट्टी का ही घड़ा रखा है। हम जब ट्रेन में यात्रा करते थे पहले, हरिद्वार से जब बनारस जाना होता था पढ़ने के लिए, बनारस से जब हरिद्वार आना होता था छुट्टियों में, तब ट्रेन में बैठते थे तो एक मिट्टी का घड़ा खरीद लेते थे, पानी भर के रख लेते थे और बनारस पहुंचते तक उसमें पानी डाल दिया, पानी ठंडा, चाहे जितनी गर्मी हो बाहर पीते समय पानी ठंडा ही मिलता था। तो जब भी आप पानी मिट्टी घड़े को खरीदते हो, ग्रहण करते हो, उस समय आपको पक्का यह विश्वास रहता है कि मैं मिट्टी को ही ग्रहण कर रहा हूं। तो क्या संसार के पदार्थों को ग्रहण करते समय में आपको यह लगता है कि मैं परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं? यदि परमात्मा उपादान कारण होता तो सबको यह लगना चाहिए था। जैसे मिट्टी उपादान कारण होने के कारण घड़े को खरीदते समय में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं मिट्टी को ग्रहण करता हूं, इसी प्रकार के सुवर्ण आभूषण का उपादान कारण होने से सुवर्ण को ग्रहण करने आभूषण को ग्रहण करने वाले को यह लगता है कि मैं सुवर्ण ग्रहण कर रहा हूं। इसी तरह ये सारे जगत के प्रपंचों के पदार्थों का उपादान कारण यदि परमात्मा होता तो हर व्यक्ति को यही लगता कि हर पदार्थों को ग्रहण करते हुए मैं परमात्मा को ही ग्रहण करता हूं। लेकिन संसार में ऐसा किसी को भी नहीं लगता है। शायद एक दो आदमी को हुआ होगा, ये एक दो को लगा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। संत तुलसीदास जी को लगा होगा शायद, इसीलिए उन्होंने ये कहा है, सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, शायद उनको लगा होगा। तो ये एकाद प्रमाण के अलावा और अन्यत्र सर्वसाधारण में ये प्रचलन में नहीं है। तब ये मानना चाहिए कि परमात्मा निमित्त कारण तो हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता। इस आशय का खंडन करते हुए ये तीसरे नंबर का श्लोक यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भविन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदं श्री दक्षिणा मूर्तये। पहले तो ये समझना चाहिए परमात्मा है कैसा और कार्य में उस परमात्मा का अनुगमन किस तरह होता है। वास्तव में कार्य को ग्रहण करने वाला परमात्मा को ही ग्रहण करता है, लेकिन उसको वह बुद्धि न होने के कारण उससे ये नहीं लगता है कि कार्य को ग्रहण करने पर मैं कारण परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं, ये उसको ये बुद्धि नहीं होती। उसका हेतु बता दिया, परमात्मा में दो चीज हैं, यूं तो और भी चीज है, जैसे सत यानी सत्ता, परमात्मा का ये सत ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा में यह सत नित्य रूप में रहता है, सत्ता नित्य रूप में रहती है। इसी प्रकार के परमात्मा में प्रकाश चित, चित माने प्रकाश, चित माने चैतन्य, चित माने प्रकाश, ये प्रकाश और चैतन्य ये दोनों पर्यायवाची है। ये दो चीज हर कार्य में अनुस्वीत है। और कार्य ग्रहण करने वाला हर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भले ही उसको ये बुद्धि न हो कि मैं परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन कार्य का जो उपादान कारण परमात्मा है, परमात्मा में जो दो भाव हैं उसका वो ग्रहण कर ही रहा है, ये हर कार्य में अनुस्वीत है। वह है सत, सत्ता और प्रकाश, ये दो चीज हर कार्य में विद्यमान है। इसलिए कार्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति परमात्मा रूपी उपादान कारण को ग्रहण कर ही रहा है, वो पहचान नहीं रहा है, ये उसकी मूर्खता है। ये मान नहीं रहा है, ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसको ये बोध ही नहीं है कि परमात्मा सत यही परमात्मा का स्वरूप है, ये उसको बोध नहीं है। गंधवती ये पृथ्वी का स्वरूप है, जैसे अज्ञानी को बोध नहीं है, जैसे घड़े को ग्रहण करने वाला मिट्टी को ग्रहण कर रहा हूं ये तो मानता है, लेकिन गंध वाले मिट्टी को ग्रहण कर रहा हूं ये किसी को बुद्धि में नहीं आता, आपकी भी नहीं आती होती होगी, क्योंकि गंधा ये पृथ्वी आश्रित है और गंध ये पृथ्वी का लक्षण है, गंध ये पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है, यह नहीं है कि कोई आगंतुक लक्षण हो। पृथ्वी में जो गंधता है वो कोई आगंतुक लक्षण नहीं है, गंधता ये पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है। जैसे जल मधुरता, जल का अपना स्वरूप लक्षण है, मधुरता ये जल में कोई आगंतुक निमित्त से संयोग से आगंतुक स्वरूप लक्षण नहीं है, वो अपना स्वरूप है। किसी के संयोग से मधुरता जल में आई हो ये बात नहीं है, मधुरता तो उसका स्वरूप है। इसी तरह गंध ये पृथ्वी का स्वरूप है, किसी के संयोग से पृथ्वी में गंध आया है ऐसा नहीं है। जैसे लोहे में गर्मी उष्णता अग्नि के संयोग से आता है, बात समझ रहे हैं? लोहे में बर्तनों में गर्मी गर्मपना ये अग्नि के संयोग से आता है, क्या इसी तरह पृथ्वी में गंध किसी के संयोग से आएगा? जैसे रसगुल्ले में मधुरता चीनी के संबंध से आता है, यदि चीनी के साथ उस रसगुल्ले का संबंध न हो तो उसके स्वरूप में, रसगुल्ले के स्वरूप में मधुरता नहीं है, समझ रहे? स्वरूप में मधुरता होती तो वो जो छेना बनता है दूध फाड़कर उसी में मधुरता होती, स्वरूप में होता तो दूध में मधुरता होती। वो मिठास न दूध में है न छेने में है, और उसी छेने से बनाया हुआ जो गोल आकार वाला रसगुल्ला उसमें भी मधुरता नहीं है। उसमें मधुरता तब संभव है जब शक्कर के साथ चीनी के साथ उस गोलक का संबंध हो जाए, तो संबंध से आया हुआ होता है। जलेबी में जो मधुरता है वो शर्करा संबंध से आया हुआ होता है। क्या इसी प्रकार के जल की जो मधुरता है वह किसी के संयोग से है? वो उसका स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा में जो सत्ता है वह किसी के संयोग से नहीं आया है। परमात्मा में जो होनापना है, सत्तापना है, ये उसका अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से परमात्मा में जो चेतना है वह किसी की संयोग से नहीं है। आज हर अज्ञानी, हर मूर्ख व्यक्ति भी यही कहता है कि जो घूमते फिरते मनुष्य हैं या प्राणी हैं वे सब चैतन्य हैं, यही मानते हैं। आप भी मानते हैं कि मेरा शरीर चैतन्य है, मैं भी मानता हूं कि मेरा शरीर चैतन्य है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी यही मानता है कि मेरा शरीर चैतन्य है, मेरा शरीर जड़ है, वह स्वीकार नहीं करता। आप भी नहीं स्वीकार कर रहे हो, और देखने वाला चींटी से लेकर हाथी, हाथी से लेकर चींटी, यावत प्राणी जीव मात्र को संसारी लोग चैतन्य ही मानते हैं, जन नहीं मानते। लेकिन इन शरीरों में जो चेतना विद्यमान है, प्रतीति है चेतनता की, इस शरीर के स्वरूप में नहीं है ये चेतना। जैसे जलेबी में चीनी के रस से, चाशनी से संपर्क होने से पहले मधुरता नहीं है, संपर्क होने के बाद ही मधुरता का संभाव होता है, संचार होता है। इसी तरह ये जो आपका हमारा शरीर है, इसके स्वरूप में चेतनता नहीं है, चैतन्य के संपर्क से इसमें चेतनता आई है, चैतन्य के संपर्क से। और जो संयोग से जो भाव आता है, वह वियोग से वो भाव हट जाता है। इसलिए मुर्दा में, मृत शरीर में चेतनता है, ये कोई स्वीकार नहीं करता, कोई मूर्ख स्वीकार करता है। एक बार की घटना में सुनाऊं, इसी बात पर थोड़ा पुरानी स्मृति याद आ गई। हम हरिद्वार में थे, लगभग 32-35 साल पहले की बात है ये। और आप लोगों को पता है कि नहीं, हरिद्वार में जो भी साधु संत देह छोड़ते हैं, उनके छोड़े हुए देह को नीलधारा में ले जाकर जल समाधि देते हैं, ये सभी को वहीं दिया है। त्यागमूर्ति गणेशानंद जी को भी वही नीलधारा में दिया है, हमारे गुरु महाराज को भी वहीं दिया है, बड़े बड़े संत वहां पहुंचे हैं, है? सभी को नीलधारा में ले जाते हैं और जल में समाधि दे देते हैं, पत्थर पुत्थर रख के वो जल में छोड़ देते हैं, वो नीचे जल में, नीचे जमीन में जाकर बैठ जाता है वो शरीर। इसलिए पत्थर डालना पड़ता है, यदि पत्थर न डालो तो फिर वो पानी में उतर जाता है और बह जाता है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा ना, हाँ, लाश हरदम तैरता रहा पानी में, लाश हरदम पानी में तैरता रहा, मगर उसे डूबने के लिए उसे जिंदगी चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक वो लाश डूबता रहता है, और जब जिंदगी चला गया तो लाश तैरने लगता है। तो इस किसी ने कहा, इसीलिए क्योंकि उसको डुबाने वाला ही जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जब पानी में डूबते हैं, जब तक वो नहीं मरता है तब तक वो डूबा रहता है, पानी के अंदर रहता है। मरते ही जब उसका जीवन निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, पूरी अष्टक चिदाभास के सहित पूरी अष्टक उस स्थूल शरीर में से बाहर निकलता है, तब धनंजय वायु काम करने लगता है, और धनंजय वायु काम करते ही शरीर फूलने लगता है और पानी से ऊपर आता है। ये स्वाभाविक ही है, अंदर वायु फूल गया तो बाहर से वह हल्का हो जाता है तो ऊपर आता है। तो ऊपर ना आवे इसके लिए, निर्जीवन प्राणी को शरीर को बांध गाड़ना है, ऊपर ना आवे इसके लिए पत्थर डालकर हम लोग जो है नदी में छोड़ देते, इस आशय से कि उस नदी के मछली है, जलचर जीव है, वह भी भंडारा खावे कभी कभी कभी, हाँ, तो हम लोग तो भंडारा खाते ही है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunyana Sambandha Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम सुनेंगे एक दिग्गज दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम तिरुज्ञान संबंदर है। चोल प्रदेश के सीरकाड़ी धाम में शिवपाद हृदय नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। इनके यहाँ तिरुज्ञान संबंदर का जन्म हुआ। बालक अभी 3 वर्ष का ही था कि मंदिर के सरोवर के पास खड़े इन्हें तीनों लोगों की अधीश्वरी उमा देवी ने स्वर्ण की कटोरी में अपना स्तन्य रूपी ज्ञानामृत पिलाया था। उस समय इनके पिता सरोवर में स्नान कर रहे थे। बालक के मुंह पर दूध के छींटे देखकर पिता ने पूछा, बच तुझे दूध किसने दिया? वेदों के लिए अज्ञात उस परम तत्व की ओर अपनी नन्ही उंगली से संकेत करते हुए बालक संबंदर ने कहा, देखिए उन्होंने दिया। फिर बालक ने काव्यमय तमिल में पद सुनाया, तोरुडई सेवी, कानों में आभूषण धारण करने वाला, वृषभ के वाहन को धारक के रूप में धारण करने वाला, अपने विशाल मस्तक पर द्वितीय के चंद्र को धारण करने वाला, अपने अंगों में श्मशान भूमि की भस्म को लगाने वाला ही मेरा चित्त चोर है। 5 वर्ष की अवस्था में अपने यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर उपदेश देने के लिए आए आचार्यों के वेद वेदांत विषयक संशयों का निवारण करके उन्होंने सबको चकित कर दिया। ऐसे अद्भुत बालक को पिता अपने कंधे पर लेकर प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए जाते थे, जहां संबंदर भगवान की स्तुति में सुंदर पदों का गायन करते थे। संबंदर इतने छोटे थे कि पैदल चलना संभव न था। देवी उमा ने उन्हें बाल्यावस्था में दूध पिलाया था, इसलिए भगवान शिव ने इन्हें अपना पुत्र मानकर सवारी के लिए मोतियों की पालकी, पहनने के लिए मोतियों का हार और विश्राम के लिए मुक्ता मंडप आदि प्रदान किया। एक बार की बात है, तिरुनीलकंठ याल पानर नामक शैव संत इन्हें मिलने आए। वे अपेक्षाकृत निम्न जाति के थे। संबंदर उनके याल मतलब वीणा जैसा वाद्य यंत्र वादन से इतने प्रभावित हुए कि याल पानर को अपने पास बिठा लिया और पद गाते समय याल बजाने का अधिकार दे दिया। यह दिखाता है कि तिरुज्ञान संबंदर ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। तिरुमरुगल नामक गांव में कोई युवती अपनी पति के साथ प्रवास कर रही थी। रात के समय सर्पदंश से पति की मृत्यु हो गई। उसके शोक में व्याकुल युवती ने हृदय पूर्वक रोने लगी। उनके रोदन का स्वर सुनकर संबंदर ने तिरुमरुगल के अधीश शिव की स्तुति की और पद गाने लगे। प्रभु कृपा थे मृतक युवक जीवित हो उठा। इस भांति संबंदर ने उस युवती का सुहाग उसे पुनः प्राप्त करवा दिया। भक्तिगान करते हुए संबंदर और याल पानर तिरुवेरुकत्तम पुलियूर पहुंचे। संयोगवश यही याल पानर का गांव था। यहाँ के एक मंदिर में जब संबंदर पद गा रहे थे तो गीत के बल कठिन होने के कारण याल पानर उन्हें अपने संगीत में बांध नहीं पाए। वे बड़े दुखित हुए और अपनी याल को नष्ट करने लगे। संबंदर ने उन्हें सांत्वना दी और ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद याल पानर भगवान के अनुग्रह से इतने अच्छे से याल बजाते थे कि लोगों को लगता था कि ये तो भगवान के ही कोई भक्त होंगे या उनके गण होंगे जो ये याल पान इतने अच्छे से बजाते हैं। सीरकाड़ी में रहते समय संबंदर की भेंट तिरुनामकरसर संत से हुई। वे आयु में उनसे काफी बड़े थे। दोनों में इतना स्नेह हो गया था कि उसके बाद दोनों साथ साथ ही यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और विभिन्न मंत्रों में पदों का गायन भी साथ साथ करने लगे। अनेक मंदिरों में घूमते हुए संबंदर और तिरुनामकरसर वेदारण्यम पहुंचे। तिरुज्ञान संबंदर ने तिरुनामकरसर को अपर का पदवी दिया, अपर यानी कि पिता। वेदारण्यम पहुंच के वहां मंदिर का मुख्य द्वार बंद था। तिरुनामकरसर ने अपने भक्तिपूर्ण पदों के प्रभाव से बड़े बड़े कपाटों को स्वतः ही खोल दिया। जब दोनों संत वेदारण्यम में प्रवास कर रहे थे तो जैन धर्म से प्रभावित पांडिदेश के दूत वहां पहुंचे। उन्होंने संबंदर से प्रार्थना की कि वे शैव धर्म को पुनः स्थापना के लिए पांडिदेश वापस चलें। तिरुज्ञान संबंदर यह नहीं चाहते थे कि ऐसे कलहपूर्ण वातावरण में संबंदर पांडी क्षेत्र में जाएं, परंतु संबंदर ने यह कहकर संतुष्ट किया कि भगवान के भक्तों को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वे पांडी राजधानी मदुरई पहुंचे। अन्य धर्म में विश्वास रखने वाला राजा भयंकर जलन के रोग से पीड़ित था। उस धर्म के धुरंधर वैद्य राजा के रोग शमन का प्रयास करके हार चुके थे। उन्होंने अपनी असमर्थता बता दी। ऐसी स्थिति में सीरकाड़ी के बालक शिवभक्त संबंदर ने शिवजी की स्तुति में भक्तिपूर्ण पद गाए और राजा को विभूत दिया। मंत्रयुक्त भस्म का लेपन करते ही राजा का कष्ट कम हो गया, शीघ्र ही वे रोगमुक्त हो गए। इसके बाद संबंदर ने वाद विवाद में शैव इतर मतवादियों को पराजित किया। मैलापुर जाकर कपालेश्वर मंदिर में पूपावई नामक युवती को, जिसका पहले देहांत हो चुका था, जीवित कर दिया। यह मंदिर समुद्र तट के निकट है। उचित समय में युवा संबंदर का विवाह निश्चित किया गया। भगवान और भक्तों के लिए प्रिय संबंदर के विवाह के अवसर पर दूर और निकट से शिव भक्त एकत्र हो गए। तिरुनल्लूर, जो आजकल अचलापुरम कहलाता है, में विवाह संपन्न होना था। जब अपनी पत्नी के साथ संबंदर अग्नि की परिक्रमा के लिए उद्युत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। सर्वत्र परम ज्योति का प्रकाश हुआ। वह एक अद्वितीय ज्योति थी, जिसमें विवाह के लिए समागत भक्तों और नववधु सहित संबंदर लीन हो गए। ऐसा माना जाता है कि शिव की अद्भुत ज्योति में संबंदर, नववधु और सारे भक्तगण एकत्र हो गए और शिव के समीप पहुंचकर उनके शिव गण बन गए। वे आज भी कैलाश में हैं, ऐसा माना जाता है। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: तो अपने जो धनुष बाण है यहां डुड्डी में रखकर सो गए थे. आप लोग कभी निद्रा लगती है तो कुर्सी में डुड्डी रखकर सोते हो कि नहीं है? ऐसे ही करके तो धनुष बाण को यहां रखा, अड़ा दिया, फिर वो सो गए. अब जगे तब तो सब देवताओं ने कहा जाकर, उदय होता है ना, दीमक, संस्कृत में दीमक कहते हैं उसको, उसको कहा अरे तुम लोग सब जाओ और उस धनुष बाण की जो डोरी है उसको चाट डालो. तो उससे क्या होगा? तो उनकी निद्रा खुल जाएगी. वो डोरी कट चूटते हैं, डोरी जब चूट जाएगा, टूट जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा, तो उनका निद्रा खुल जाएगी. दीमक ने कहा कि नहीं नहीं, सोते हुए को नहीं उठानी चाहिए, पाप लगता है. एक साधारण जीव भी सोता हुआ हो तो उसको नहीं उठानी चाहिए, वो तो साक्षात भगवान सो रहे, उनको क्या उठाना. बोले नहीं नहीं, ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा भाई. मुझे क्या दोगे बोलो? ये कमीशन घुस खाने का काम तो पहले से हुआ है. मैं मान लो कि वो धनुष बाण के डोरी को मैं तोड़ूंगा चाट कर, तो हमको मिलेगा क्या? तो सब देवताओं ने कहा कि यज्ञ में हमारे लिए जो आहुति डालते हैं, आहुति डालते समय यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो चरु गिर जाता है वो सब तुमको खाने को दे देंगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. सच? बोले हां. तब जाते सभी गए, दीमक सब गए और तो डोरी चाटना शुरू कर दिया. चाटते चाटते जब डोरी टूट गई तो एकदम धनुष का वो खुल गया, उछल गया. उछलते ही विष्णु का तो गर्दन ही कट गया, दो टुकड़े और कट गया. इतना ही नहीं, कट के वहीं टुकड़ा रहता तो वो उसके झटके से वो समुद्र में जाकर गिर गया. अब ये प्रसंग आत्मानंद ने गप कर दिया, कहोगे तो देवी भागवत देख लो भाई, देवी भागवत में लिखा है. अब क्या करे? हाय राम, ये तो हमने जगाने के लिए किया था, वो तो गर्दन ही कट गया. तो अश्विनी कुमार थे देवताओं के वैद्य, चिंता न करो, हम भी शिव के चेले हैं, हमने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, हम भी सर्जन हैं, जाओ जो सिर मिलता है वो लेके आओ. फटाफट देवता लोग दौड़े तो घोड़ा वही पड़ा हुआ था एक, तो उसी का सिर काटा और ला के दिया. ये मिल गया तो जोड़ा तो उल्टा जुड़ गया, सिर उल्टा जुड़ गया. समझे कि नहीं? क्योंकि भगवान विष्णु जब उनका सिर कट गया तो पेट के बल पर गिरे थे, और सिर न होने से किधर पेट है किधर पीठ है पहचान नहीं पाए देवता लोग. उल्ट ला के पीछे से इधर मुख करके गाड़ दिया, तो जब खड़े हुए विष्णु मुख तो पीछे ले जा, जो हो सो होगा. बोले ये सब क्या हुआ महाराज, तुम लोगों ने मुझे क्यों निकाला? बोले महाराज वो हयग्रीव राक्षस बड़ा उत्पात कर रहा था और आप तो आराम से सो गए थे, या हम लोगों को तो जीना दुभर हो गया था, और इसलिए आपको उठाने जगाने के लिए किया था. अब क्या पता कि आपका गर्दन ही कटेगा, अब कट गया, अब तो करे क्या, अब ला के जोड़ दिया तो ये भी उल्टा जुट गया। हाय राम, जो होता है अच्छा ही होता है। जब विचार किया तो उसने वरदान क्या मांगी थी, बोले मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, तो हयग्रीवा की मृत्यु हयग्रीवा से ही हो, तो विष्णु को हयग्रीव बनना पड़ा और इतना खटपट करना पड़ा। देखो, समझे कि नहीं? इसी तरह भगवान शिव को, गणेश को ये सारी खटपट करना पड़ा। तो पार्वती को समझाया आखिर शिव जी ने, विष्णु के सिर जोड़ने के समय में हाथी का सिर नहीं मिला, क्योंकि हाथी का सिर मिलता और हाथी का सिर जोड़ देते तो हयग्रीव न मरता, तो घोड़ा ही मिला। और गणेश के सिर जोड़ते समय में हाथी न मलकर घोड़ा मिलता, घोड़े का सिर मिलता तो गणेश गजानन न होकर अश्वानन होते, और जो अश्वानन है वो गणाधिप नहीं हो सकता है, गणाध्यक्ष नहीं हो सकता है, गणपति नहीं हो सकता है। वेद ने सीधे लिखा है जो गणपति होगा वो गजानन होगा। ये देखो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चिंता न करो। जब ये प्रमाण मिल गया तो पार्वती खुश हो गई। इस बात को लेकर मेरा बेटा भले ही हाथी का सिर से जिंदा हो गया, लेकिन मेरा बेटा सारे गणों का अध्यक्ष हो गया, अग्र पूजक का अधिकार हो मिल गया उसको, प्रथम पूजा अग्र पूजक हो गया। ले जी, बाप से बेटा अग्र पूजक हो गया, शिव कृपा से ही न हुआ। अब ये मुसल का प्रहार गणेश न करते तो गणेश अग्र पूज्य होते, गणाध्यक्ष होते। शिव की कृपा नहीं है तो और क्या है, बोलो। शंकराचार्य जी उस प्रसंग के प्रति इशारा करते हुए कहते हैं, अर्जुन ने धनुष बाण मारा तो आप खुश हो गए, गणेश ने मुसल मारा तो आप खुश हो गए, अब क्या मैं भी मुसल उठाऊं? मैं तो क्यों नहीं खुश होते हो? नति भी नुति भी बहुविध पूजा, अनेक प्रकार की पूजा भी कर ली है। नति वीर नुति भी स्तमी ही सब पूजा, विधि वीर ध्यान समाधि वीर न तुष्ट। तो क्या धनुषा मुसले न च अस्मभीर? अब पत्थरों से आप खुश होंगे क्या? बता, आप ही बताओ, जिससे हम खुश होंगे मैं उसी का प्रयोग करूंगा। ते प्रीति कर्म तथा करो। अब पत्थरों से खुश हुए हैं भगवान शिव, ये प्रमाण बहुत मिलता है, समझे कि नहीं? दक्षिण भारत में पेरियार पुराणम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। अब लोग इधर पुराण पुराण बोलते हो ना, शिव पुराण विष्णु पुराण आदि पुराण पुराण है, वैसे तमिल भाषा का ग्रंथ है पेरियार पुराणम। है पेरियार, पता नहीं लेकिन पुराण है, ग्रंथ है। उसमें भगवान शिव के 54 परम भक्तों के चरित्र का वर्णन है, एक से एक, जैसे प्रहलाद का चरित्र है ऐसे ऐसे। तो तमिल में, तमिलनाडु में, साउथ में, दक्षिण में जो बड़े बड़े भगवान शिव के भक्त हुए हैं उन लोगों के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन है पेरियार पुराण में। और शंकराचार्य जी उस बात को जानते थे क्योंकि दक्षिण के ही थे, उन्होंने पेरियार पुराण तो पढ़ा ही था। वहां एक भक्त हुए है उस भक्त का नाम था शाक्य नायर, शाक्य नायर। उसके शिव पूजा की बड़े विचित्र ढंग था भाई। मां बाप थे नहीं, मर गए थे बचपन में। उसकी एक बहन थी शाक्य नायर की, उसका नाम अक्कार था। उधर के नाम ऐसे होते ना, अक्का नाम था उसका। अक्का भगवान शिव की परम भक्त थी और उसने अपने भाई को भी शिव दीक्षा दी थी और शिव पूजा का नियम बताया था और दोनों भाई बहन परम शिव के भक्त थे। लेकिन शिव भक्ति मात्र से तो काम चलेगा नहीं, योगक्षेम के लिए तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने काम खोजना शुरू किया, कहीं काम मिले तो काम करें। तो शाक्य नायर काम खोजते हुए गए थे तो किसी ने उस समय का जो वहां का राजा था वहां कुछ काम मिल गया उनको। तो काम करते थे, योगक्षेम चलता था। लेकिन वो राजा फिर परम नास्तिक था, परम नास्तिक, मूर्ति पूजा नहीं मानता था, धर्म कर्म नहीं मानता था और कोई इस तरह नियमित पूजा करते हुए उसको दिखाई पड़ा तो उसको दंडित करता था। विशेष करके उसके मातहत के कर्मचारी लोग को भगवान की भक्ति करते हुए पता चला तो उसको नौकरी से हटा देंगे, मार ही डाले। तो बड़ी समस्या हुई। शाक्य नायर ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया हूं, क्या करूं? नौकरी छोड़ता हूं तो योगक्षेम की समस्या है, नौकरी करता हूं तो शिव पूजन की समस्या है। राजा नास्तिक है, उसने सूचना प्रवाह कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी भक्त भगवान की पूजा न करे, सेवा न करे, भक्ति न करे। और इस अवस्था में मैं भगवान की पूजा करूं, एक दिन एक दिन उसको पता तो चलेगा, मुझे निकाल देगा। खाली निकाल दे तो गनीमत, मुझे दंडित करेगा, मार भी सकता है वो, क्या करूं? बोले ऐसी समस्या है? बोले हां बहन। तो बहन अक्का ने कहा, बेटा भैया मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? रोज नियमित एक पत्थर मारा करो। शिव मंदिर में अंदर शिवलिंग होता है, हाँ, सबके देखते देखते उठाओ पत्थर और जोर से निशाना साधकर ठीक शिवलिंग में लगे ऐसा पत्थर मारा करो। तो देखने वालों को लगेगा कि परम नास्तिक है, तो तुम्हें तो और पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इतनी समझना कि पत्थर मारने से पहले दिल पत्थर का नहीं बनाना, दिल पूरी तरह भगवत भक्ति से बनना और कर्ण कहना, महाराज मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता और राजा का अनुशासन खतरनाक है, उसके अनुशासन से आपकी पूजा कर नहीं सकता और मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता। कि मैं लोगों के दृष्टि में भले ही पत्थर हो महाराज, तुम पुष्प समझकर ही ग्रहण करना महाराज, फूल ही समझकर ग्रहण करना। इस भावना से वह पत्थर मारा करता था बहन की आज्ञा से। तो राजा के साथ कई सवारी जाती थी, राजा की वो भी जाता था और राजा को कहता था, महाराज एक मिनट, अब क्या हो गया, मंदिर के आगे? बोले ये हिंदू लोग बिना मतलब का ये पूजा पूजा भगवान भगवान करते हैं, सारा समाज को बिगाड़ रखा है इन लोगों ने। पूजा क्या, इनको तो पत्थर मारना चाहिए। राजा के सामने पत्थर उठाया, निशाना साधा और मन ही मन भावना की, शिवजी ये मेरे तरफ से पुष्प है। मारा राजा के सामने पत्थर, मारा ठीक शिवलिंग में लगा। राजा ने देखा, वास अब्बास है, क्या बढ़िया मेरा भक्त मिला है, मेरा कर्मचारी है। एक दिन की बात है, और ये नियमित पत्थर मारते थे सत्यनारायण, रोज आना और पत्थर उठाना मारना। एक समय नदी में बहुत बाढ़ आ गया और नदी में पुल तो था नहीं, जा नहीं सके, पत्थर मारने पार जा नहीं सके। परिणाम हुआ पानी में भीज गए, उनको बुखार हुआ भयंकर, तो सो गए, कमरे में आकर सो गए। तो राजा ने देखा क्या सत्यनारायण आया नहीं, किसी ने कहा कि वो तो बहुत बीमार हो गया, चलो जाके देखता हूं। तो राजा सत्यनारायण कहां आया, भगवान शिव वहां प्रतीक्षा करते थे कि आज सत्यनारायण पूजा करने क्यों नहीं आ रहा है। तो बड़ा विचित्र है वो, तो हमने एक दिन कहा था ना, कहते हैं ना ये दुखा है, क्या है? क्या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। अब ये मोहनिश दिन दिन आकर रोज कहता है, महाराज मालिश करूं, मालिश करूं, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, हैरान करता है। अब एक दिन मालिश करने नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, क्यों नहीं आया, कहना पड़ेगा कि नहीं। और सत्यनारायण एक दिन फूल चढ़ाने नहीं गए, पत्थर मारने नहीं गए, भगवान शिव ने विचार किया क्यों नहीं आए, पता लगा तो बेचारा बीमार हुआ है, बहुत भारी बुखार हुआ है। तो भगवान शिव स्वयं सत्यनारायण को झोपड़ी में पहुंच गए और खुद शिव सत्यनारायण के बुखार में सिर में जल की पट्टी कर रहे हैं, ठंडे जल के पट्टी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। राजा जब वहां पहुंचा, देखता है सत्यनारायण की सेवा करने लगे, कौन देखता है तो अरे सिर में त्रिशूल मुकुट है, चंद्रमा है, गले में सर्प है, ये तो शिवा है। और ये शिवा सत्यनारायण की पूजा सेवा कर रहा है, स्वयं जल की पट्टी कर रहा है, ठंडे जल की पानी पट्टी, क्या अद्भुत। ये तो रोज शिवजी को पत्थर मारता था और आज शिवजी। सत्यनारायण ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है, मैं तो रोज आपको पत्थर मारता था। बेटा तो पत्थर नहीं फूल ही देता था। नीलकंठ दीक्षित ने एक कविता लिखी है, अर्चामीति धिया यदेव कुसुमम शिप्वा जनो मुच्यते, मैं परमात्मा की पूजा करता हूं इस भावना से भक्त लोग शिवजी को फूल चढ़ाते हैं और उस फूल चढ़ाकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और वही फूल कामदेव ने शिवजी के ऊपर फेंका था, लेकिन कामदेव भस्मीभूत होकर खराक होकर खत्म हो गया। वस्तु तो एक ही है ना, भक्त भी फूल चढ़ाता है, कामदेव ने भी फूल ही मारा था। पुष्पायुध बोलते हैं ना कामदेव को, उसके धनुष हथियार ही फूल है, पांच हथियार है, वही मारा था, लेकिन वो भस्मीभूत हो गया। नीलकंठ दीक्षित कहते हैं, विद्या मीति धिया तदेव विकिरण भस्मीकृतो मन्मथ इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको। भगवान शिव कैसे हैं, आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक, वो वस्तु पर विचार नहीं करते हैं, वस्तु कैसी है इस पर विचार नहीं करते हैं शिव, उसकी भावना कैसी है। आभ्यंतर वृत्ति रसिक हैं, कामदेव ने फूल मारा लेकिन इनको जीतूंगा करके फूल मारा था, शिवजी को मैं जीतूंगा, सबको जीता है इनको भी जीतूंगा करके फूल मारा था, भस्मीभूत हो गया। भक्त वही फूल चढ़ाता है परमात्मा को प्रसन्न करूंगा करके, वो मुक्त हो जाता है। इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको बाह्यान अपेक्षाचये, परमात्मा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं करते हैं, भावना की अपेक्षा करते हैं। स स्वामी मम दैवतम तदितरो नामना पिनामना यते, वही मेरे परम स्वामी हैं, उस शिवजी के अलावा अन्य वो तो नाम मात्र के स्वामी हैं, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे असली स्वामी तो शिव ही है जो आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक है। हाँ, सक्यनार ने पत्थर मारा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और शंकराचार्य जी तीन दृष्टांत दे रहे हैं शिव जी के सामने। अर्जुन ने बाण से मारा तब आप खुश हुए, गणेश ने मुसल से मारा तब आप खुश हुए, सक्यनारायण ने पत्थर से मारा तब आप खुश हो गए। अब मैं भी अब इन्हीं में से कोई एक उठाना पड़ेगा आपको खुश करने के लिए, नहीं तो पूजा करता हूं खुश नहीं हो रहे हो, नमस्कार करता हूं आज तो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, है वाह क्या कहना। बचसा चरितम बदामि शंभो अहम उद्योग विदा सुते अप्रशक्त हो मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवम नमामि। भगवान की सेवा करने की तीन मुख्य विधा है और इन्हीं तीन साधनों से, तीन विधि से ही भगवान की सेवा की जा सकती है। भक्तों को इसी का आश्रय लेना चाहिए। बचसा चरितम बदामि, भक्त को जब भी अवसर मिले तो परमात्मा की ही चर्चा करे वाणी से, संसार और सांसारिक विषयों की चर्चा न करे। बचसा चरितम बदामि हे शंभो, संबोधन है, अहम योग विदासु ते अप्रसक्त, अहम उद्योग विदासु ते अप्रसक्त, अन्य पूजा या अन्य आपको प्रसन्न करने की जो उद्योग हैं, उपक्रम हैं, विधि हैं, उसके लिए मैं असक्त हूं, अप्रसक्त, मैं सामर्थ्यशाली नहीं हूं, मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए बढ़िया मंदिर बनाऊं और वहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा करूं और नित्य निरंतर रुद्राभिषेक के द्वारा, नमक अध्याय द्वारा, आपकी अर्चना करूं ये मेरी बस की बात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अहम उद्योग विदासु ते अप्रसक्त, आपकी पूजा करने में मैं असक्त हूं, असामर्थ्यशाली हूं। हां यह है कि आपकी कृपा से मुझे जो वाणी मिली है उस वाणी से आपके नित्य निरंतर गुणानुवाद गा सकता हूं, वचसा चरितम बदामि। और दूसरी बात, मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे, बैठकर मैं आंख बंद करके मन से आपके दिव्य चरित्र विद्या स्वरूपों का मैं ध्यान कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता। विष्णु ने तो सहस्र अर्चना की आपकी, और एक भूल कम होने से आपने आंखें ही चढ़ा दी। रावण ने तो अपनी बहुत अर्चना की और अपने एक एक करके दस दस मस्तक आपको चरण में अर्पण कर दिया। बाणासुर ने तो और भी ज्यादा आपकी कृपा से ही प्राप्त 1000 हाथ से 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रोज आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 1604 पूजा विधि से पूजा करता था और नर्मदा में विसर्जन करता था। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दैनदिनी। मुझमें यह सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए इतना ही है कि मैं बैठकर आसन लगाकर मनसा आकृतिम ईश्वरस्य सेवे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिं अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। मैं इस स्वरूप का तो ध्यान कर सकता हूं मनसा, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। शिरसा चैव सदा शिवम नमामि, और तीसरा विकल्प है मैं जो कर सकता हूं वो आपके श्री विग्रह जहां भी होंगे मैं सिर से उसको श्रद्धा से प्रणाम कर सकता हूं। बस वचसा चरितम बदामि, मनसा आकृतिम सेवे, और शिरसा चैव सदाशिवम नमामि।